0: मैं
1: नहीं की गप्पू सबका
2: उस सब तो कपिता ना लाइन में सभी तो टीम प्लस उतो
1: नहीं मैं किधर ना मखगवस तो दिनी ओ कनकना ने दुकान में आगे से मुंह तबांग तबांग गिपर